लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया। पीवन पानी आनी मीरा, खाए ना पीसन जाओ, पक्का फेरी पैर मलोबा, जपत रहा तेरा नाम। लूण रामी नानक लाला, बख्शे तुद बटियाई, आद जुगा दया पतदाता, तुद बिन मुक्त न पाई मरमल पहला। कोई आखे भूतना, कोई कहे बताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। पैदवाना साहका, पैदवाना साहका, नानक बौराना, ओ हर बिन अवर न जाना रहा। तो दीवाना जानिए जा पै दीवाना होए, एक ही साहेब बाहरा दूजा वरना जाने कोई। तो दीवाना जानिए जा एक आकार कमावे, हुक्म पछाने खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तो दीवाना जानिए जा साहेब तरे प्यार, मंदा जाने आपको अबर भला संसार। मारू मेला पहला, ए तन सर्ब रहा भरपूर, मनमुख फिरे न जाने दूर। सो तहन वखर नाम हृदय मारे, जिस तू देवे तिसे न तारे रहो। ना हो धन जाले ना तस्कर ले जाए, ना हो धन डूबे ना इस धन को मिले सजाए। ए तन की वेखो बड़ियाई, सहजे माते अंद जाई। एक बात नूप सुनो जन भाई, इस धन बिन कहो किने परम गत पाई। पंत नानक अकथ की कथा सुनावे, सतगुर मिलता ही तन पावे। मारू महला पहला, सूर सस सोम लै, सोम सार पोख लै, जोगत कर मर्त सो सरबंध की जय। मीन की चपल ज्यों जोगत मन राखिए, उड़े न हंस न कंध चीजै। मूड़े काच परम पुलाना, ना है चीनिया परम ना परमानंद बैरागी रहो। अजर कहो जार लै, अमर कहो मार लै, भांत तज छोड़ तो आपो पीजै। मीन की चप्पल ज्यों जोगत मन राखी है, उड़े ना हंस न कंध चीजै। पंत नानक जानो रहे जे हर मानो, मन पावन स्यों अमृत पीजै। मीन की चप्पल ज्यों जोगत मन राखी है, उड़े ना हंस न कंध चीजै। मारू मल्ला पहला, माया मुई न मन मुआ, सर लहरी मैं मत, बहुत जल सिर तट के साचा वखर जित। मानक मान है मन मारसी, साचन लगे कित, राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत। बाबा सच्चा साहेब दूर ना वेख, सर्व जोत जगजीवना, सिर सर सच्चा लेख रहाऊ। ब्रह्म बिसर सी ब्राह्म, ब्रह्मा बिसर सी मुनि, शंकर इंद्र तपे पेखारी। माने हुक्म सोहे दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोद जति सन्यासी, गुर गुरपुरे विचारी। बिन सेवा फल कबू न पावस, सेवा करनी सारी। ने तरिया तन ने गुरिया, गुर निमाणिया तू मान। अंधले मानक गुर पकड़िया, निमाणिया तू मान। होम जपा नहीं जानिया, गुरमति सच पछाण। नाम बिना नहीं दर टोही, झूठा आवण जान। सच्चा नाम सलाहिए, सच्चा ते पत होए। ज्ञान रतन मन मांझिए, बहु न मैला होए। जब लग साहेब मन वसे, तब लग बिघन न होए। नानक सिर दे छुटिए, मन तन सच्चा सोए। मारू महला पहला, जोगी जोगत नाम निरलम, ताके मैल न राती। प्रीतम ना सदा सच संगे, जन्म मरम गत बीती। गुसाई तेरा कहना, हम कैसे जाती। जा तो हो पीतर मैल बुलावै, पूछो बास नाती रहम। ब्राह्मण ब्राह्म ज्ञान इंद्री, ब्राह्मण ब्राह्म ब्राह्मण ब्राह्म ज्ञान इस नानी। हर गुण पूजो पाती, एको नाम एक नारायण, त्रैपण एक ज्योति। जे वाडंडी वहो कट छाबा, तोले नाम आचारी। एको हाट सह सबना सिर, बनजारे एक पाती। दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े, सो बूझे जिस एक लिव लागी। जियो रहे निरपाती, शब्द वसावै कर्म, शब्द वसावै परम चुकावै। सदा सेवक दिन राती, ऊपर गगन गगन पर गोरख, ताका आगम गुरु पुनवासी।
ਗੁਰਬਚਨੀ ਬਹਾਰ ਘਰ ਵੇਖੇ ਨਾਨਕ ਪਇਆ ਉਦਾਸੀ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐ ਨਸ ਜਾਗੈ ਨੀਂਦ ਨ ਸੋਵੈ ਸੋ ਜਾਣ ਜਿਸ ਬੇਦਨ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਕਾਨ ਲੱਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ ਵੈਦ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਾਰੀ ਜੀਉ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਫਤੀ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਉ ਰਹੋ ਫਿਰ ਸੇਤੀ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਚਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਥਾ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਹਿ ਸੇਤੀ ਤਨ ਕਰੀ ਸੁਖੇਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਜੀਉ ਸਹਿਸਾ ਤੋੜੇ ਪਰਮ ਚਕਾਵੈ ਸਹਿ ਜੇ ਸਿਫਤੀ ਧੁਣਕ ਚੜਾਵੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਮਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਜੋਗਾ ਧਾਰੀ ਜੀਉ ਓਮ ਮੈਂ ਜਲਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਜਾਂ ਪਰ ਵਾਜੇ ਖੜਗ ਕਰਾਰੇ ਜਬ ਤੇ ਕਹੇ ਨਾਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਸਹੋ ਜੀਉੜੇ ਭਾਰੀ ਜੀਉ।

अमृत हे भाई मकंदू हे भाई चांज हे भाई कदारा जी तुसी वाद विवाद ना करो गुरमुखो गुरबाणी पाठ दा अपना महात्म है कीर्तन दी क्या बात है और कथा दा बड़ा विशाल फल है।

0: गुरुनिवा जी सास वित रसना पवित्र करो उच्चारण करो सतनाम
1: जी
0: श्री वाह। बहुत समय मगरों फिर आप जी दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त हुए है। गुरु साहब जी की बख्शिश गुरसिखां दा प्यार मुड़ खिच के आप जी दे चरणा विच लै आया है। आए ते पता लगा कि तीन दिन तीन रोजा समागम बाबा शेख फरीद जी दे याद नूं समर्पित अज तो आरंभ होया और तीन दिन वास्ते ही अज रात कल रात परसों दोपहर नूं तुहाडे चरणां विच बैठ के गुरु नाल जुड़न दा जतन करना है। पर अज गुरपुरब है, गुरु दे घर पुरब है, पुरब खुशी गुरु दी याद नाल वाबस्ता जेड़ा दिन जुड़ जावे ओ दिन खुशी दा समागम हो गया। समागम आज गुरु नानक साहब जी दा गुरु की संगत सारे आखो धन गुरु नानक साहब। आज गुरु नानक साहब जी दा व्याह पुरब व्याह कारज दी वरेगंढ दा दिहाड़ा गुरपुरब है। तो मन विच आई अज दी हाजरी गुरु नानक साहब जी दे पुरब नूं समर्पित हो गई। कल तो फिर जिवें हुक्म होया कि बाबा शेख फरीद जी दी याद नूं समर्पित हाजरियां होवन, अज गुरु नानक साहब जी दे चरणा ते मत्था टेक के आओ गुरु नानक साहब जी दी जंज विच तुसीं भी शामिल हो जाओ। तुसी भी शामिल हो जाओ। आपे जांजी आपे मांजी, वो जांजी भी है ते मांजी भी है। जांजी नचदे टपदे आउंदे हन और मांजी हत्थां विच फुल लैके स्वागत वास्ते खड़ोंदे। जिस वेले जंज आउंदी है ते आम तौर ते साधारण तौर ते ए शब्द गाया जांदा है, हम घर साजन आए साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए हर मन भाए, पंच मिले सुख पाए, साई वस्त प्राप्त होई जिससे ती मन लाए, अनदिन मेल भया मन मान्या कर मंदर सोहाए, पंच शब्द दुन अनहद वाजे हम घर साजन आए। आओ गुरु नानक साहब नाल जो भी जुड़ गया, जो गुरु जोगा हो गया, गुरु फिर उस जोगा हो गया। महान तपस्वी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले बचन करिया करते सन, अखे गुरु नानक किदा, गुरु नानक किदा, ते फिर आप ही समत बख्श देंदे सन जो गुरु नानक दा। तू गुरु नानक दा हो जा, गुरु नानक तेरा हो जावे। अब शब्द पढ़िए, हम घर साजन आए। जो कोई भी नाल हुणे भाई साहब जी बहुत गहरी व्याख्या बड़े मिठे बोल विच बड़ी संगत नूं एकाग्रता बख्श के उपदेश दे उत्ते उपदेश दे मजमून ते ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਜੀ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਸਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਚ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਪੁਰਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੰਝ ਵਿੱਚ ਜਾਂਝੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਨਾਲ ਗਾਂਧੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਾਈਏ।

जैसा है होता है सारे अनंग जीवन परम परम पेतर सुख नाही पर वे सारे साधु संत हमारे मिता बिन हर हर अनिता रे सा संग हर गुण गाय हे जन पदार्थ जीता रे राउत्र गुण माया ब्रह्म की किन कहो कवन भेद तरिया तरिया रे कोमन के गा गा कर गुरु सब दे पार तरिया रे खोज खोज खोज बिचारे तत् नानक एहो जाना रे सिमरत नाम धन मूर्ख मन माणक पति आना रे असम अल्लाह पंचमन दो पह दे गो प्रसाद मेरे मन बसिया जो मांगे सो पावो रे नाम रंग मन त्रुतन बोर्न कतो ताबो रे हमरा ठाकुर सतय उचारण जन सस गावो रे खिन में थप थप नरत चत जब रे रहो जब देखो प्रभु अपना स्वामी तो अवरा चितना पाप रे नानक दास प्रभा पराया ब्रह्म पाओ मेट लखावो रे असमला बनवा चार वर्ण चौहा के मर्दन खट दर्शन कर तली रे सुंदर सुगुण स्वरूप श्याने पंचो हिमो छली रे जन्म मिलवा

प्रभु की सेवा चरण सन दयाल तेरे तुन्य माने मान जी प्राण आधार तेरा नानका का प्रभ ताना समहला पंजवा डोल डोल मादुक पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिय नीत सा सत्याय सो प्रभ त्याग वर परित राव करण कर समरासो प्रभु जी दाताया पव त्याग सगल सियाण पाठ पर प्रभ जाप मीत सखा सहाय संगे उचे कमरा पार चरण कमरा सहाय हृदय जी को आधार कर कृपा प्रभ पार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख वड्डी वड्याय जप जी वैना निकनाओ असमहला पंजवा उद्यम करो कराव ठाकुर पैकल साधु संग हर नाम चराव रंग नाप ही प्रभ रंग मन में राम नाम जाप कर कृपा व सुमर हृदय हो सहाय आप राव सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पैकन गा चाओ दया करो कर्म अपने गोया मनो स्वाओ तन तन तेरा तुम प्रभ मेरा हमरे वास के चना है ज्यो ज्यो राखे त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाए जन्म जन्म के घर खटे मदन हर जन तुर पाए भगत परम प्रणाम से हर नानक सदा हजूर असम पंजमा अगम गोचर दस रा सो पाए जिसम से पाग आव कृपाल कृपा प्रभ सारे सदगुरु भक्त हर नाम काल जुग दारिया गुरुदेव मर मूत मूर्द मुद होते सब लगे तेरे सेव राहो तुम आप करता सब सतरता सब मेहर समाये तुम राधा विषमाधु सब पाई प्यारी पाए सत युग त्रेता द्वापर भणिए कल युग उत्तम युगा माहे ऐ कर करे सुय कृपाए कुणा पकड़िया किसा चाय हर जो सोई कर दे भगत तेरे जाते हैं तेरा बिरद कर जुड़ नानक दान मांगे अपने संता दे हर दरस रागा समहला पंजवा कर तेरवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतगुरु वचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे राहो महाबेखा दे जुटे अपवादित पौनीत संघारे जन्म पवन चंद्र पड़ंत जन के कुल आधारे कोई न जाने कोई न मन से प्रकट हर द्वारे कवन उपमा देव कवन बढ़ाई नानक खन खनवारे आसम लपन बाह बाबर सोय रह रहो मुकुटम्ब खय रसम मिथया चरण गय है मिथन मनो सुभन आनंद सुमन मुख सत गये अमृत नाम पदार्थ संग तिल मर मन लहे कर कृपा राख सत संग नानक शरण आहे असम लपनवा तप देवा प्रेम प्री राहो कनक गणक गज मोतिन लालन नह नाह नही राज न भाग न हुकम न साधन कैसे कैसे न जाहे चरणन शरणन संतन बंदन सुख सुख पाहे नानक हरि मिले प्रेम प्रिय समल अपना गुरु दिखायो लोहिना रहो इतह उतह घट घट घट घट तू ही मोहना कारण करना तरण तरना एक एक सोहना संतन परसन बड़े हरे दर्शन नानक सुख सुख सोहना असमहल पंजमा हर नाम बोलाओ सहज सोहला राव संग साई छोड़ ना जायो गय अतोला प्रीतम भाई बाप मेरो माई भक्तन गाओ लाला कलकाया गुरते पाया नानक ए हो हर का चोला समहल पंजमा अपने भगतन भाए ठाकुर आयो आहे राव नाम पदार्थ हो सकार चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे दुगता रख संत संगा हे नाम चावसा समाव नानक हर गुण गाया समहल पंजमा ठाकुर शरण सुहाया संतन भावे राहु आप गवाया शिव कमाया गुण रास रास गावे एकायास दस प्रयास न पावे दया तो हरि क्या जंत विचारे नानक बबल जावे असमहल पंजमा एक सिमर मन माही राहु नाम जया वृद बसाव तुझमन को नाही प्रभ सर आये सर्व फल पाई सगल दुख जाय दिन को दाता पर को दाता नानी काट काट आई असम हल्ला पंजमा विश्व समुआ राहु नाम त्या वह सर्व फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे हो कर्म कमावे बंध नलनी भ्रम सुआ कहो नान जो सतगुरु भेटिया सो जन ने चलते आसम हल्ला पंजमा कर चौदमा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद
ओहो निहन वेला अपने प्रीतम से लाग रहे रहो जो प्रपावे जन्म ना आवे हार प्रेम भगत हर प्रीत रचय प्रभ संग मन लीजय ए मन दीजे नानक ना मिले अपनी दया करो आसम लपन अमर राम प्यारे तुम बनते दुखो ना करे रहो सिमरत शास्त्र बोकर्म कमाए प्रभ तुम दस बन सुख नाही वर्तन संयम कर थके नानी साधु शरण प्रभ संग वसय आशा महला पंचमा कर पंद्रमा प्रतायतों कर सगुरु प्रसाद विकार माया माधव सोया सूझ बूझना आवे पकर केस जम उठारियो तदही कार्य जावे लोभ बिख्या बिखै लागे हेर वित चित दुखाही खेन पंग ना के मान मत असुर जाने नाही रहो वेद शास्त्र जन पुकार सुने नाही डोरा निबट बाजे हार मुका पछतायो मन पोरा दान सगल गैर बाजे परया दीवान लेखा न परया जे कर्ज रहे ओला सोय कामना करया ऐसो जग मोय गुरु दिखायो तो एक कीर्त गाया मान दान तज सैन सर नानकाया समला पंजवा पार गोविंद नाय शासन बनाए प्रिया पाए गुण गाय पंच नाद तुर बजाय राव कृपा पाए सजाए दर्शाय अब रात्या गोविंद संत से प्रेत नाथ रंग लाल नलाय गुरु ज्ञान मन दृढ़ाय रसाय नय आए सहजाय मन दान पाए सबत जी मन की काम करा चेर चेर चेर चेर पया मन बहुत प्यास लागे हर दर्शन दिखाओ मोह तुम बताओ नानक दिन शरण आए गल लाए असमन लपन कोई बिखंगार तोरे आस प्यास तो मोह परम तय हो रहे रहो काम क्रोध लो मान ब्याद छोर संत संग नाम रंग गुण गोविंद गाव आंदन प्रभ त्याव ब्रह्म पीत जीत मिटाव निद नाम नानक मोरया समहला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल काम रहो तज मार मो बेकार मिथ्या जप राम राम राम मन संतना के चरण लाग प्रभ गोपाल दीन दयाल पद पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण पागा समहला पंजवा हर खोग बैराग आनंद खेल दिखायो राव किनो पै निरपै किनो किनो उठदायो किन रस भोगन किनो किनो तज जायो किनो जोग ताप बो पूजा किनो परमायो किनो कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो रागा समला पंजवा कर सतारवा सवरी क्यों कर सगुरु प्रसाद गोविंद गोविंद कर हाँ हर हर मन प्यार हाँ गुर कया सुचित तर हाँ तोर फेर हाँ ऐसे लालन पायो रे सखी राहो पंकज मो सर हाँ पग नहीं चले हर हाँ गहड्यो मुड़ न रहा अनन उपाव कर हाँ तो निश्चय शरण फेर सखी थेर थेर चित थेर हाँ बन ग्रह सम सर अंतरिक पेर बार अनेक तर राजन जो कर कहो नानक लोग लोग सखिया सवरी महला पंजवा मन सा एक मन हाँ गुरु नेत ध्यान दृढ़ संत मंत ज्ञान हाँ सेवा गुरु चरान हाँ तुम लिये गुरु कृपान मेरे मना रह टूटे अन पर रव्यो सर्वथान हाँ लयो जम्पियान हाँ पायो पेड़ थान तो चुके सगल कान लैन जिसम थान पैसागर पार पर आना निज कर दिशाए थान हार रस रस मान लथ तिस बखान नानी सह समायो रे मना अश्वरी महला पंजमा हरि हरि हर गुनिहा जपिय सह तुनिहा साधु रसन पनिहा छोटन बेद सुनिया पाये बट पुनि मेरे मना राव खोजा जन्म निहा सर्व का प्रभु तनिया दुर्लभ काल दुनिया दुख बना सुनिया प्रभु पूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविए हाँ लख पेविए हाँ तां सो प्रीत कर हाँ बिन सुन जाय मर हाँ गुर ते जानिया हाँ नानक मन मानिया मेरे मना सबरी महला पंजवा
ඒකාවට ගහු හංගුර කසවද කහු හා ග්‍යසාත සවහෝ හා මන නිදාන් ලහු හා සුකැම් ප්‍රමයේ මෙර මනරව ජීවත දුමරයන් දුතර සුතරයන් සෞකරයන හොය හන්නර පෝකයෝ සොය හා මිටයන් දෙසයා සන්තෝප දෙසයා මෙර මනා ජෙස ජන නාම සොකා තෙස නෙගට නකද දුකා जो हर हर जा सुने सबको तो सुमन सफल सुहाया नानक प्रभु पाया मेरे मन आसौरी महल्ला बने मेरे हर जस गाइया परम पद पाइया ओआ रस जो बिदय हाँ ताको सगल सिदे हाँ दिन जागया नानक बड़ पा गया मेरे मन राव संत पग तो यहाँ धर्म तो खो यहाँ दास रेन हो यहाँ व्याप दुख ना को यहाँ भगत सुन पर जन्म न कदे मर हाँ सर सफाय हाँ हर हर दिन जप लय मेरे मना साजन मीत तुम्हा नाम दृढ़ाए मुहा तस्मन नाय को हाँ मन राज सोए हाँ नमक न विसरे हाँ तस्मन क्यों सरे हाँ गुर को कुर्बान जाओ हाँ नानक जप नाव मेरे मना सौर महला पन्म कारण कर्ण तू हाँ अवर्ण सुदे मुहा कर सो हो हाँ सहज सुख सोय हाँ तेज मन पै हाँ प्रभु के दर पै मेरे मन राहो साधु संग में हाँ पूर्ण संज में हाँ जब ते छुटे आप हाँ जब ते मिटे ताप हाँ कृपा तारिया हाँ पद रख बनवारिया मेरे मन आए सुख जानिया हार कर सुमानिया मंदा नाय को यहाँ संत के ऋण तो यहाँ आप जिस रखे हर अमृत सोच है मेरे मना जिसका नाह को यहाँ जिसका प्रभु सोय अंतर्गत बुद्ध सब गति से सुध यहाँ पत तो धार ले हाँ नानक दास हो मेरे मना सौर महला पंचमय के तुका पर देसिया सुन सुन देसिया रहो जासो रच रहे हाँ सब पवता जगाया सुपना जो पे हाँ हर नाम जन लय हर दा ज्ञान लगे हाँ जन्म मर पग हाँ हर हर जान लय हाँ जीवत स रहे हाँ जिसे कृपाल हो नानक भगत सोए क्यों कर सुगुरु प्रसाद आगा स

सिमरन दुश्मन ठरा, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे, प्रभ कै सिमरन अंदर जागे, प्रभ कै सिमरन भाव न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभ का सिमरन साधु कै संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नाओ निद्ध,

जय समानी प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरे से जन जिनको प्रभु मया नानक तिंजन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरनी चौंकुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन

उदारी, हर को नाम घन माहे उदारी, अनग पुनः चरण करत नहीं, तरा हर को नाम कोट पापर हर, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे, सगल सृठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाह करोरी बंदना परा, हर का नाम जपत निस्तर अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै, जे मार्ग ए जात अकेला, तो हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नामन सदा त्याई, नानक गुरमुख परमगत पाई, छूटत नहीं कोट लग बाही, नाम जपत पार पराही,

नाम संग उजियारा जह पंथ तेरा को न सिंहानु हर का नाम तय नाल बशानु जय महाभयान तपत बहु काम ते हर के नाम की तुम पर छाम जह त्रिखा मन तुझ आकर्ष तह नानक हर हर आमृत बरख।

जनको मुकुत जुग तर्क नाम जनको त्रिभुत पुगत अर्क नाम जनक रूप रंग हर नाभ जप परे न भंग अर्का नाम जनकी वड्याई हर के नाम जन शोभा पाई

सर्पांग कैपिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हावस गवन करतार करुणा में दीन बेनती करा नानुक तुमरी कृपा तरा संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलवा कह ग्रह पीतर बासाय अनंत के लमाया रंग रसाय लुड़कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूडे चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो बिन सब तेरी रास तू मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे कोई ना जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरा सूत्र धारी तुम ते हो स्व आज्ञाकारी तुमरी गत में

अगंध शापनी दे रास खात पीत बरते अनद उलास अपनी अमान कछ बहुर सारे अज्ञानी मनरोस करे अपनी प्रतीता भी खोवाए बहुर उसका विश्वास न होवाए जिसकी बस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहार।

साधु गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद क्षत्रिय मृत खाहे तिस ठाकुर को रखमन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमगत भावे जय प्रसाद बसे सुख मंदर तसे ध्याय सदा मन अंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तसे त्याकत तबर लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मनाठ पहर थका जस गावि जाय जय प्रसाद तुस बकाऊ मन मुखता को जस रसन बखाना जय प्रसाद करो रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल

जय निप्रसाद अश्वहस्त सुवारी मंत्र प्रभु को कबू ना बिसारी निप्रसाद बाग मिलक मिलक तना राग प्रोय प्रभ अपने मना जन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है। जय प्रसाद करे पुन बहुदान मनाठ पहर कर सका त्यान जय प्रसाद तुम आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा चितारी जय

श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोहे जो जो कहे सो मुक्ता हुए सुनमिता नानक बिनमंता साधु जना की आचार्य कथा। अष्टपदी साधक संग मुकूजल होत सा संग माल सगली खोत साधक संग मिटे अभिमान।

सैसंग पापलायन सासंग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वदान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कश काल दर्शन भेट दोत निहाल साधक संग कलुकत हराय साधक संग नरक पर हराय साधक संग इहा उहा सुहेला सा संग बिछर तरमेला जो छाय सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पाल ब्रह्म साधर तपसाय सा नानक उदराय साध सुनरसाय साधक संग सुनो हर नाव सा संग हर के गुण गाओ साधक संग न मंते बिसराय सा संग सर पर निस्तराय साधक संग लगे बरा मीठा साधु कै संग घटगा डीठा सा संग भया गया गारी सा संगत भई हमारी साधक संग बेटे सब रोग नानक साध बेटे संजोग साध की महिमा वेद ना जाने जिता सुने तिता बखियान है।

ओए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जलमय कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी का दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पमान, ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक जो वसुदा कौ खोद कौ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाव नानक जो पावक सह स्वभाव

पार ब्रह्म के रंग जैसी मध्य तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म कर्ता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उसत करह अनेक जन अंत न पारा बार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार। अष्टपति कई कोट हुए पुजारी, कई कोट आचार बिहारी, कई कोट भये तीर्थवासी, कई कोट बान भ्रमे उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तबीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट खबका बिचारे, कई कोट नवतर नाम त्यावे, नान करते गंत न पावे। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपा न कठोर, कई कोट अभग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरे, कई कोट पर दुख न करहे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश प्रमाहे। जित जित लाभो तित तित लगना, नान करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रथ भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरखन बजाए, कई कोट पवन पाणी बस अंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससीर सूर न ख्यातर, कई कोट देव दानव इंद्र शेर शतर। सगल समग्री अपना सूतारे, नानक जिस जिस भाव है तेस तेस निस्तार है। कई कोट राजस्थान सात, कई कोट वेद पुराण सिमरथर शास्त्र, कई कोट किए रतन समंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख के नर पिसाच, कई कोट भूत प्रे सूकर मृगाच, सब ते निराय समूह ते दूर, नानका अलिप्त रिया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जुन्नी फिरे, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट का लेथक पाहे, कई कोट की है तरबंध, कई कोट माया में चंत, जय जय भाणा तै तै राखे, नानक सब कुछ प्रभु का हाथे। कई कोट भय भय रागी, राम नाम संग तिल निब लागी, कई कोट प्रभु को खोजंते, आत्म पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन ब्र प्यास, तिनको मिलियो प्रभु विनाश, कई कोट मांगे सात संग पार ब्रह्म तिल लागा रंग, जिनको आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई खोट कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होया अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार बसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बा भांत, प्रभ ते पर माहे समात, अकांत ना जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तेना होवता आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस बीबे अमर भये सा साधी जीवे, कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को सा सा समारे, नानक परमेश्वर के प्यारे। सरो करन कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोय, नानक दिस बलिहारण जल थल मही रसोय। अष्टपदी करन करामन करने जोग, ज्योतिष भावे सोई होग, खिन में थाप थापन हारा, अंतर किश पारा वारा, हुक्मे धार अतर हावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक समय रहा समाई। प्रभावे मानुगत पावे, प्रभावे त पाथर तरावे, प्रभावे बिन सास ते राखे, प्रभावे त हर गुण पाख है, प्रभावे त पाथत उधारे, आप करे अपन बिचार है, दुआ सरिया का स्वामी, खेल विकसे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरण आवाय, कह मानुक ते क्या हुए आवाय, ज्योतिष भावे सोई करावाय, इसके हाथ हुए था सब कुछ लिए, ज्योतिष भावे सोई करे, अन जानत बिख्या मैं रचाय, जे जानत आपन आ बचाय, पर मैं भूला दह दिस्तावाय, निमख माहे चार कुंड फिर आवाय,

तन मंता कर कर बावै तन समान का संग ना जावै बहु लश्कर मान को ऊपर करे आस पाल पीतर ताका हुए बिना सप्ते आप जाने बलमंत खन में हुए जाए बसमंत किसे ना बदे आप अहंकारी धर्मराय तस करे खुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे बिमान सो जन नानक दरगे परवान कूट कर्म कराया हूं तारे शरम पावाए सगरे बिर थारे अनंग तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर भरे अवतार अनंग जतन कर आत्म नहीं द्रवाए हर दरगे को कैसे गवाए आप इसको जो भला कहावे पित से भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मौज ते कश होए तब को सुख नाही कोए जब जाने मैं किस करता तबलक गर्भ जून में फिरता जब तारे को बैरी मीत तबलक ने चलनाही जीत जबलक मोह मगन संग माए तबलक तरमराए देश जाए प्रभु कृपा दे बंधन दूठे गुर प्रसाद नानक हूं छूटा सहस

आप देशाय समझे आप रचा सबका साथ आप किनु अपन विस्तार सबका शुष्का वो करने हार से भिन्न कह हऊ किशोय धान धरंतर एक सोय

राष्ट्रपति संत का दुखने आर जा कटाए, संत का दुखन जमते नहीं छुटाए, संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक में पाए, संत का दुखन मतवे मरीन, संत का दुखन सुबाते हीन, संत के हते को रखाए ना कोई, संत का दुखन थान भ्रष्ट हो, संत कृपाल कृपा जे करे नानक, संत संग नंदक भी तराए, संत का दुखन दे मुख पवाए, संतन का दुखन काग जो लवाए, संतन का दुखन सरूप जोन पाए, संत का दुखन तरक जोन किरमाए, संतन का दुखन तृष्णा में चलाए, संत का दुखन सबको शलाए, संत का दुखन ते सब जाए, संत का दुखन नीच नीचाए, संतों की कथाओं को नाहे, नानक संत भावे तम वे भीगत पाहे।

संदना सुने सो बचन सर्वव्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिसकी ए राहत साध भजन साधु सब कहत। जो जो हुए सोई सुख मान्य है कर्ण राम न हार प्रभु जान्य है। अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही। आप साथ किया सब साथ तिस प्रभु ते सगली उत्पात।

उतरे तिनके साथे सरनजोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम सा संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिगारते रहते राम नाम संरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभतारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तुत करो संत मीत सावधान एकागर जीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बस है सोत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए।

गाविता सामदर्शी एक दृष्टिता ए फल तस्जन काय मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने यहन दहान जपय मन कोवे सब जुग में थाकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम ओट अपराध सा संग मिठाय।

आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया गुणी निदान, गाविया सुनिया मन रखिया पाओ, दुख पर हर सुख कर लै जाए। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं, गुरमुख रहे आसमाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हाउ जाना आखा नाहीं, कहना कथन ना जाए, गुरा एक देह बुझाए, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण भाणे के नाए करी, जेती सिरठ उपाई वेखा, विण कर्मा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर के सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिया नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई ता वात न पुछै के। कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे। सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनया धरत धवल आकाश, सुनया दीप लो पाताल, सुनया पोह न सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास। सुनया ईसर बर्मा इंद, सुनया मुख साला हनुमंद, सुनया जोग जुगत तन भेद, सुनया शास्त्र सिमृत वेद। नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास, सुनया सत संतोख ज्ञान, सुनया अठ सठ का इसनान, सुनया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनया लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास। सुनया सरा गुणा के गाह, सुनया सेख पीर पात साह, सुनया अंधे पाव है राहो, सुनया हाथ हुवै असगाहो, नानक भगता सदा विगास, सुनया दुख पाप का नास। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कह पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत स्यो प्रगट जाए।

एहो अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, उच्चे उपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिख्या ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगे जोध अपार, केतिया गणत नहीं विचार। केते खप तुट है बेकार, केते लै लै मुकर पाहे। केते मूर्ख खाही खाहे, केतिया दुख भूख सद मार। एह पे दात तेरी दातार, बंद खलासी भाणै होए। होर आख ना सकै कोए,

जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता आपना, जिव तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पात साहो साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख सरम पत झोली, ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा सा।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेस। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान। जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान, ओह वेखै ओ ना नदर ना आवै।

ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सरम खंड की बाणी रूप तिथै काड़त घड़िया बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध

जिनकै राम वसै मन माहे, तिथै भगत वसह के लो, करह आनंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वरभंड,

देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विसवरच्यो स्वयं पव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख अदेस धर्म धाम सो भरम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्वशास्त्र न जानही जे रूप रंग अररेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही वह चित्त मद पार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहो साहन साहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग अभा अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतुर चक्र दान्या चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रथिस अधिस अदृश अकृस भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आछिज देश के आपिज भेस के आगंज करम के आपंज भरम के आपिज लोक के आदित सोक के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अपरण के जगतं कृति है के क्षत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूप है के अनुभव अनुप के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन के एक अधीन के रोजी रजा कर रहीम रिहक के पाक व्याव है के गैबुल गैव है के अफबुल गुनाह के साहन साहा के कारण करिंद के रोजी देहांद के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग करिय के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान के सर्वत्र गौन के सर्वत्र पावन के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साज के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र साज के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र मान्या सदैवंग प्रधान्या के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान्या के सर्वत्र मान्या के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलीमै के परमं फहीमै के आकल अलामै के साहिब कलामै के हुसन अलवजू है तमाम मुल रजू है हमेशल सलामै सलिख तमदामै गनीमल सिकस्ता ग्रेबल परस्ता बिरंदुल मकान जमीन उल जमाना तमीज उल तमाम रुजु अल दान हरीफल अजीम रजायक यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अपंग है अजीज उल नवाज है गनीमल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है परभुक्त प्रभा है सुजुगत सुधा है सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे स्वपहं सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिभुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है चाचरी छंद
अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, स्वनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद तो प्रसाद, सर्वंग हंता, सर्वंग गंता, सर्वंग ख्याता, सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग हर्ता, सर्वंग कर्ता, सर्वंग प्राणं, सर्वंग त्राणं, सर्वंग कर्मं, सर्वंग धर्मं, सर्वंग जुगता, सर्वंग मुक्ता, सावल।

सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकंग श्री कह अमितो अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमल खिराज है गरीबल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासर फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तल अजीज है परम परम ईस है समस्तल अदीस है अदेसल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद पहार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तरतुरास आजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित्त चरण नाम अनछिज गात अजिजना बात अनचंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड स है खलखंड स है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथप्पा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबाकृत है अमृता मृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अरगंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे भुजंग प्रयाद छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे
कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विपूते सदा सच्चदानंद सत्रं प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमल रहीमे चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पुगते स्वयं पव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री मुखवाक पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये श्रावग शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध शुद्धादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न दीखित प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हु ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत

श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रत्ती बिन एक ना लेखै। शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे। श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।

नात फिरियो लिए सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बिख्यान सो बैठ कै, ऐसे ही ऐस सो बैस बतायो, साच कहो सुन लिहो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो, काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह, काहू पछा को सीस निवायो।

आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रासन वरिया, हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरे चतुर्दशकंता।

पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा। एका रूप अनोप स्वरूपा रंक पयो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज किन्नी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर अकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणकाता। जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होवै मरे पुरख जावन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे। जो कल कौ एक बार त्यै है ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिसट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छुअ सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल विख सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन कौ छै करता। श्री सतुज जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोए दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो याहे सुरसना पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकटना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई। संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस फुन तीन कहि जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार।

सगल द्वार कौ साढ़ कै गयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेते मन वजियां। वाधाइयां राग रतन परवार परियां, शब्द गावड़ आईया सबदोता गाव हो हरि केरा, मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया।

कथे ओह अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किन न पाया, चतुराई न पाया किन, तू सुन मन मेरिया। एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिना कीती जिन ठगौली पाइया। कुर्बान कीता तिसा विट हो जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किन न पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तुझे देखदा चलै नाही, तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही। तिस नाल क्यों चित लाइया, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइया। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया।

जैसी अगन उधर में है तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जम्या परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी।

ए रसना तू अनरस राच रहे तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पीऐ हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए। एहो हर रस करमी पाइयै सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अनरस सब विसरै।

जेकर सुतग मनी सौते सुतग हो गोए ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाजना कोय पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सुतक।

नानक प्रभ पिखंदिया पौड़ी मेले हो दयाल तह पै द्वारिया रख ले वो दीन दयाल परमत बोहार।

सुख दुख जय परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस्तत निंदिया नाहे जे, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तह जान।

सदगुरु प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे अठो नंदन प्रथम राग भैरो वे करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम भैरवी बुलावली पुन्या की गावे बंगली पुन सुलेखी की पई बारी ए भैरों की पंचो नारी पंचम अर्घ दुसाग सुनावे बंगाल मध माधो

परि जय मार्पिता सुतमित न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाये जय मा प्याम दूत जम दला चकेवल नाम संग तेरा चलाए जय मस्कर होवे अत भारी हर को नाम किन माय उदारी अनपन चन करतने तर हर को नाम कोड पाप पर हर गुरुमुख नाम जप मन मेरे नानक पाप सुख नेरे सगल सृष्ट को राजा दुखे हर का नाम जब तो सुखिया ला करो रे बंद नाम पर हर का नाम जब तने सर अनक मार तिख नाम बुझा वेर का नाम जब त्यागा जय मार गए जाता कहला तर नाम संग होत सोहेला सा नाम सदा त्याय नानक गुरु परम गत पाइये छूटत ना।

भरत बर खै भगजन के भरत नाम संजना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम दरे जन कोट हार जस करत संत दिन रात हर हरे औख साध कमात

हर का नाम जन केवड़े आए, हर के नाम जन शोभा पाए, हर का नाम जन को पूजो, कर नाम जब कचनाए ब्योग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा। हर हर जन के मार खजेना, हर तन जन को आप्रभ दीना, हर हर जन के ओढ़ सताने, हर प्रताप जन अवन जाने, ओत बो जन हर रस रा

जे प्रसाद पे में शीतल जला सुखदाय पवन पाप कमला जे प्रसाद हो गया सब रसा सकल सामग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरथ नत से त्याग वर संग रचना से दो।

करतार करुणा में दीन बेनती करे नानी तुमरी कृपा तर संग साई सुहावे नाथी जो बराई ता सुब्रीत बलव के गृह पितर बस रंद कल मय रंग रस दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल नया वह मुड़े चेत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ त्रो याहो जुगत बयाने के जन्म।

साधक संग जय प्रवने रासा संग सबोतन बेरा साग संग पाय न रतन साग संग एक पर जतन साधक मेहमा बन कौन पर नानक साग शोभा ब्रह्मा सुमान साग संगा गोचर मिलाय साग संग सदा पर फुलाय साधक संगा वह बस पंचाशा संग मृतराज पंचाशा संग सब के रह न साग संग मनोहर बैन साधक संग न कतु तावै सा संग सतमन पावै साग संग माया ते पैन सा संग नानक प्रसो पर सन साध संग दुश्मन समय साधु के संग मापने सात संग के सुन बैर साग संग न बिगा पैर साध के संग न एक मंदिर

ब्रह्म ज्ञानी का नाम है धार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सदाय, ब्रह्म ज्ञानी ओ बंते आगत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद।

ब्रह्मज्ञानिका सगर्वनमाय ब्रह्मज्ञानिका कौंजाने पे ब्रह्मज्ञानिका सदादे ब्रह्मज्ञानिका कथेना जाय दाखर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्मज्ञानी के मत कौन बखान ब्रह्मज्ञानी के ब्रह्मज्ञानी जाने ब्रह्मज्ञानिका अंतन पार नान ब्रह्मज्ञानिका सदा नमस्कार।

मिथ्याना ही रचना परस मन में प्रिय निरंजन दर्श परतर रूप न पेख्या नेतर स्वागिर संसंग हेत कर्ण सुन कहु की निंदा सप्त जान आपको मंदा गुरु प्रसाद क्या पर मन की वासना मन ते डराय इंद्रिय जल पंजोग तेरा नान कोट मजे को ऐसा पर वैष्णो सो जस ऊपर सो पर सन विष्णु की माया ते हो भिन्न कर्म कर तो ने कर्म तुझ वैष्णो का निर्मल धर्म का उपल की छह नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग राचा

पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नाने देवे देख बढ़ाई इसका बल नाई सार करण कर हम सर्व को नाथ आज्ञा करी बपर दियो जो तुझ पावे सोई फंती कबो उजने चम बसा कबो सो कर रंग हसा कबो नंद चंद व्यवहार कबो बकाश पायाल कबो बेता ब्रह्म विचार नानिका मिला बना हर कबो नित कर भोपाल कबो सोए राय दिन राल कबो महा क्रोध विकराल कबो

संतन के दुख सर्व जौन पाए संत के दुख अंतर जौन किरमाए संत के दुख संत का दुख अंतर स्नाम जला संत के दुख सब को छला।

करे संगा दुखी जन में मरे संग दुख न सुख ते डरे संत के दुखी को नाही ठाव नान सं पावे तले मिलाए संत का दुखी अभी टूटे संत का दुखी कित काज ना पहुंचे संग दुखी को ध्यान परमाई संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा जन साथ बिना मृत की लोथा संत के दुखी के जड़ कितना है अपन बीजा पे ही खा है संत का दुखी को न रखना नान संत पावे ते उबार संत का दुखी बिल लाए ज्यो जल बेहून मछली तड़बड़ाए संत का दुखी भुखा

जिन प्रभ जाता सवंत सकल संसार उदर धनमंत प्रभ का सहयोग सकल उदाहरण प्रभ का सहयोग दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुरु का सदा।

येहो अर्थ पावेदन कोय अमृत पीवे अमर सोय स्वर का नाय कदे बिना आज्ञा के मन बैठा कुंतास आठ पैर हर का नाम ले सचव उपदेश को दे माया के संग न ले मन में रखे हर हर एक अंधकार दिव्य प्रकाश से नाने परम दुख तय ते न से तो तुम्हें ठांड वरता है नंद ब्याद नाट पाए जन्म के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण उपदेश है पहो चुका निरपो है बस सगल भया मत खन से दिखा साधन कृपा तारे सा संगम नाम मरारी ते पाए चुके ब्रह्म गावन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगन पियो ही कला तार जन सगली मोही अपने चिर प्रभा बनाए अपनी कीमत अपे पाए हर बंधु जनाई को सन्म नरंतर को सोए ओत पोत रव्या रूप रंग

संत जनाम करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पास समित विचार चरण कमर तमायर उतार करण कर्ण सोबर समरथ कर गौ नाम हर वाथ एहो तन संतो भगवंत संजना का निर्मल मंत एकाश राखो मन माय सर्व रोग नानक मिट जाए जय सुतान को चार कुंड उड़तावे सो तन अर्थ वाते पावे जय सो सुख को नित बाचे मित सो सुख साधु संग परे जय सो बाको करा पाली करने सा सो बाप जर के जन को पावे रोग न जाए रोग मिट रोग दिलाए।

कवन चुटकार सिरथ द्वारे छोटाटम चूट पासारे जिंदे अतत भजना बेगना ना बिता नान पहचाना गुर के मत ले बिना डूबे सने हर के बद करो मन में निर्मल हो तुम्हारो चेत चरण कमर राखो मन माय जन्म जन्म के कल बजाए आप जपो वरा नाम।

जिसका साधन लिया मिलाए नारे पति नाम समाय सुख मित्र काल न बने सुख मित्र दे किया जाने सुख मित्र दे तब कर दिया सुख मित्र दे जीवन दिया सुख मित्र दे अगर मैं राखे गुरु प्रसाद को बिरला रखा सुख मित्र दे।

जब ना निरंजन गोचर करते तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप आप या चरदा नानक अपन रूप आप यो परदा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तब निर्मल कहो क्या तोता जय निरंजन रंखा निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय श्रु केवल जग देता छल चतुर लगत को केस जा जो श्रुपिता संग समाप है तय कैसे भोग कवन ध्रुवता वह कर्ण ग्रामन करने हर नान करते कर ना सुमार जब अपनी शोभा अपने संग बनाई तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला पे पर बेनता वेद के तब कहा को चीन जब अपने आप पर उतर तब सगन सगन कहा विचार जह अपन ऊंचा बना नेरा तय कौन ठगर कौन कहिए चेरा बेसमर

जय प्रत्य प्रपंचकार चगण में किन विस्तार पापुंता पै का को नर को सुर बंचावताल दल मया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दो सुख मान अपमान प्रकार के बख्यान अपन खेल अब कर देखे खेल सुनको तय तो नानी के कह जय भगत भगत आप जय पथरा पसार संत प्रताप दो पाका पैतन उनके स्वभाव नो बने आप कौत

सतु पर करु पर दर्घन पे के तुम्हारी कट कर कुमर माए नानक बोन आवा जाए तिस्ते दूर का खुदा उबरे रख नारत्याय निरप जब सकल पमिटे प्रभु कृपा ते प्राणी झूठे प्रभु राके तुत नाय दुख नाम जबत मन हो वसु।

दर्शन फेकत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल झाके अनुप सफल दर्शन सुंदर रूप तन सेवा से परवान तर धाम प्रदान देश मन बस सोत ने हालता के निकट नाव काल।

कृपा प्रभा मिलाय मिट गए बैर पै सबरे अमृत नाम साहब संग लैन सो प्रसन्न पै गुरुदेव पूर्ण हो सेवक के सेवा दिन दाल बिकारते रहते राम नाम सरस न कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक ने भी कह पारी प्रभु के सगरो संत में सावधानी का कर जय सुख मनि सह गोविंद गुरु नाम जसवन बसे सोत निधान सर्व इच्छा ता के पूर्ण होय पर धान पुरख प्रगट सब लोय सब ते उज पाए आसान बौ न होवे आपन जान अर्थन काट दले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होय खेम शांत रत नव नित बुद्ध ज्ञान सर्वथा सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश

परे ना गुण ना उपकार सेती खुशी सवारी है नानक कारज सार महला दूजा मन हठ तरफ जिना जे पई जे बहुता काली तरफ जने सत भाओ दे जन नानक शब्द विचारे पौड़ी करते कारण जिन किया सो जाने सोई आपे सरेठ उपाय आपे फुन गोई जोग चारे सब भव थकी किन कीमत होई सतगुर एक विखालिया मन तन सुख होई गुरमुख सदा सलाही है करता करे सो होई श्लोक मोहला दूजा जिन्ना पोतन नाहे पौ मुछ पो निब्याह नानकहो पटांतरा तित दी बाण गया मोहला दूजा तुरदे को तुरदा मिलै उड़ते को उड़ता जीविते को जीवता मिलै मूवे को मूआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सचे गुर शब्द विचारी।

पौड़ी कहया कोट रचाया हर सच्चे आपे एक दूजे भाए खवाई ना होमे विच व्यापे यो मानस जन्म दलंब सा मन मुख संतापे जिस आप बजाए सो बुझसी जिस सा

माया मोह सब कूड़ है, कूड़ो होए गया होमे झगड़ा पायोन झगड़े जग मुआ। गुरमुख झगड़ चकायोन इको रव रहया, सब आत्म राम पछाणिया भवजल तर गया। जोत समाणी जोत विच हर नाम समया, सलोक महला पहला सतगुर भीख्या दे। मैं तू समरथ दतार सतगुर

आधार एनस नव तन निर्मला मेला कबू ना होए नानक ए बिद छुटी है नदर तेरी सुख होए मोहल्ला पहला इको कंत सबाइया जीती दर खड़िया नानक कंत रतिया पुछे बातड़िया।

जय ज्ञान प्रगास अज्ञान मिटंत वेद बाद संसार की कार वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करे बीच।

क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहेब मनो न बिसरे तो सहला मरना होए। स्वर्गवासी बापू सरजीत सिंह जी गिल, जिन्हां दी पहली बरसी ते इकहत्तर होई गुरु प्यारी साध संगत जी बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अज बापू सरजीत सिंह नूं याद कर रहे हैं। उन्हां दे जीवन साथी सत्कारयोग माता दलजीत कौर गिल, उन्हां दा सारा परिवार, उन्हां दा सपुत्र सत्कारयोग सरदार जसविंदर सिंह गिल अते उन्हां दी नौ राणी भैन जी सिमरनजीत कौर गिल, ग्रैंड चिल्ड्रन अते बाकी सारा ही गिल परिवार। बापू जी दे पांच बच्चे, जिन्हां चों चार धी राणियां अते एक पुत्र, जो सरदार जसविंदर सिंह गिल साढ़े गुरद्वारा साहब फ्रीमाउंट दे प्रबंध विच सिख पंचायत दे भी मैंबर ने, ते बड़े ही मेलनसार अते सारा ही चंगा परिवार। सब तो पहला मैं जो परिवार वालों बापू जी की आत्म रूह की शांति वास्ते श्री सहज पाठ साहब प्रोग्राम करवाए गए सन, जिन्हां दियां संपूर्णतावां होईयां, अरदास बेनती की गई है, ब्रागमय कीर्तन होया है, ब्रागमय कीर्तन सत्कारयोग भाई सुखजीत सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री अमृतसर दरबार साहब वाले, जिन्होंने बड़ा ही ब्रागमय कीर्तन आप संगतों नूं सरवण कराया है। सत्कारयोग ज्ञानी सुखदेव सिंह जी, जिन्होंने अरदास अते आप जी नूं गुरु जी दे हुक्म सरवण कराए, मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा। अज तुसी सारे ही गिल परिवार दे सद्दे पत्र ते इत्थे पहुंचे हो। गिल परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है। मैनों बार सत्कारयोग वीर जसविंदर सिंह जी गिल मिले सी, दसिया कि उन्हां दे चाचा जी मोडेस्टो तो इत्थे परिवार समेत पहुंचे ने, अते इन्हां दे चाचा जी दी धी राणी, दमाद, वह सारा ही परिवार, गिल परिवार सारा इत्थे पहुंचिया। सो मैं सारे ही आई हुई संगत अते सारे गिल परिवार का जिथे धन्नवाद करदा, उत्थे अफसोस करदा कि तुसी अज वो अपने बजुर्गों नूं याद करदे हो, जिन्हां दियां यादां हमेशा तुहाडे नाल ताजियां रहणगियां। बजुर्गां दी घाट कदे भी पूरी नहीं हुंदी, जदों भी इस संसार नूं अलविदा कह के जांदे, उन्हां दियां बहुत जिम्मेवारियां पिछे छड के जांदे ने। सो मैं वेखदा कि ये वीर बड़े तरीके दे नाल सारे परिवार दे नाल मिल जुल के सारियां अपनियां जिम्मेवारियां निभा रहा है, अते जो ये बजुर्गों की याद विच गुरबाणी पढ़नी अते गुरबाणी पढ़ के उस ते चलण दी मार अगे अरदास करनी, ये बड़े भागा नाल मिलती है। सो मैं ज़्यादा समा ना लवां, मैं अपने जंडी परिवार वालों अते गुरद्वारा साहब फ्रीमाउंट दे समूह सेवादार सिख पंचायत दे सारे मैंबर साहिबाना वालों सारी आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, अते अरदास बेनती करदा कि महाराज जो बजुर्ग साढ़े पासों एक साल पहला बिछड़ गए
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ।

तीजा गुरमुख सदा हर रंग है हर का नौ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमरा ज्ञान देर चुकाया महला तीजा मन मुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राख्या और तार पनत नानक सुन जन पाई सतगुर सेवो हां मैं मल जाई अंदर संसार दुख ब्यापे सिर तंदा नित मार दूजे पाए सूते कबू न जागे माया मोह प्यार नाम ना चेत है।

ऐसो एहो संसार पेखना रहन न कहु पई हरे सुदे सुदे रेग चलो तुम नतर कुद का दी बई हरे रहाओ बारे बूढ़े तरने पहिया सब हूँ जम ले जई हरे मान सब प्रामुसो की नोमीच बलैया खई रे खई हरे तनवंतार निर्तन मन नहीं ताकि कछु न कानी रे राजा पर जा सम कर मारे ऐसो काल बड़ा नीरे हर कोई सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी है आवे न जाहे कबू न मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलतर लक्ष्मी माया एह ताज जी जानी रे कहत कबीर सुनो रे संतो मिल है सारंग पानी रे बिलावल विद्या ना परो बाद ना जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मैं बाबा मैं बौरा सब सल सब खलक

कह जाने अबह न माता सो कब हु ना माता कहे कबीर रामे रंग राता बिलावल ग्रह ताज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अज हो बेकार न छोड़ी पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो भव जल निध पहारी राख राख मेरे बीठला जन सरन तुम्हारी रहाओ बिखे बिखे की बासना तज यन नह जाई कहन अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई जरा जीवन जोवन गया किछ किया न नीका एह जियरा निर्मोल को कौडी लग मीका कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्ब व्यापी तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूझे हर हर रस लपटियो हमरे कुल कौन राम कहयो हमरे कुल कौने राम कहयो जबकि माला लई निपुते तबते सुख न पयो रहाओ सुनहो जिठानी सुनहो दिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए एह मुंडिया क्यों न मोयो सर्व सुखा का ए हर स्वामी सोगर नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हर नाग सनख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत हलै उदरयो बिलावल को हर समान नहीं राजा ए पापत एह भूपत सब दे

परपंच झूठ गुमाना कह कबीर ते अंत बिगोते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पर खोतमो जाके रू रेखना रूप रे मन हर भज परम तज हो जग जीवन राम रहाओ आपत कछु न दिसै नह दिसै जात जह उपजे बिनसे तही जैसे पुरबन पात मिथ्या कर माया तजी।

चरण कमल जाके हृदय बसे, सो जन क्यों डोले देव, मानो सब सुख नौ निदता के, सहज सहज जस बोले देव, रहाओ तब हे मत जाओ, सब मैं देखे कुटल गांठ जब

ब्राह्मण बैस सूद अर खत्री डोम चंडार मलेच मन सोए होए पनीत भगवंत भजनते आप तार तारे कुल दोए तन सो गाओ तन सो ठाओ तन पनीत कुटंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर छतरपति राजा भक्त बराबर और न कोए जैसे पुराण पात रह जल समीप पन रविदास जन्मे जग ओए बाणी सदने की राग बिलावल एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरपकने

मन चित आस रख जे मन चित आस रख हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किछ जो जिए वरते प्रभ कह लिया किसे का एक तिल ना गवाई हर तिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहे असमाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साने फल आस सब बिरथी जाई रहाओ जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत सब तिसकी आस लग जन्म गवाई इस इनके कछ हाथ नाही कहाँ करे एहो बपड़े इनका वाहिया कछु ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई जो किछ आस अवर कर है परमित्री मत तू जान है तेरे किते कम आई एह आस परमित्री पाओ दूजा है खिन मैं झूठ बिन

0: सेव सदा तू अपना रहाओ जा मैं सब निदान है सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रतना जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी तिनके चरण मलहो हर दसना शब्द पसाण राम रस पावो ओह उत्तम संत पयो बड़ बड़ना तिस जन की बड़े आई हर आप बधाई ओह कटे ना किसे की कटाई एक तिल तिल एक तिल तिल ना
1: ਗਿਆਨੀ ਲੈਣਾ।

सब साजी हुक्मे ही सब साजियन रहया रव्या सब वण त्रिण सब किछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पण सब देही सोजी पई सच्चे आप बुझाई। श्लोक महला तीजा। अभ्यागत एह नाखियन जिनकै चित मैं परम तिसदै दितै नानका ते हो जेहा धर्म अपै निरंजन।

आनंद सुख विश्राम नित हर का कीर्तन गाए अवर स्यान पछाड़ दे नानक ओ दरस नाए पौड़ी ना तू आभे बस।

मन तन हिरदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। उपदेश सुनियो तुम गुरसिखो सच्चा एह सुवाओ। जन्म पदार्थ सफल हुए मन मह लायो पाओ। सुख सहज आनंद घना प्रभ जपतिया दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजै दरगह पाइय थाओ। महला पंजवा।

संगत निर्मला अड़सठ मजना गा जिस प्रभ मिलिया अपना सो पुरख सुभागा नानक तिस बलिहारण।

पाई जन्म मरण पौ कटियन फिर जौन न पाए अंध कूप ते काढ़ियन लड़ आप फड़ाए नानक बख्श मिलायन रखे गल्लाए। श्लोक महला पंजवा मुहब्बत जिस खुदाई दी।

सौ सोए जिन गोई उठाली होर्यों रंग वहाइय दुनियाई आखै के कौन नानक ईसर जगन्नाथ उचहादी वैण ब्रिय कौन मधाणा पर्वत कर नेत्र वासक

मदन रस चाखिया त्रे पवन पया उजियारा रहाओ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस पारी। काम क्रोध दोए किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुरु कम्मत।

करी जगदीसर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण गे तुम शरणागत प्रतिपालक स्वामी हम राखो पाप हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को कर को ना उदरियो प्रभ किए पतत पव गे गुण गावत छिपा दुस्तार्यो प्रभ राखी तैज जन गे जो तुमरे गुण गावे स्वामी हों बल बल बल तिन गे पवन पवन पवित्र

हर परवरणे, हर हर नाम दया धारी, हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ, हर तुम वडा गमा गोचर स्वामी, सब त्यावै हर रुड़ने, जिनको तुमरे वड़ कटाक है।

पिता साजन संत मेरे संत सहाई बीर बा खुले परम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पै नानक जस गावत ठाकर गुनी गहीर नटम।